0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साधारण नहीं होता है।

कुछ रहेंगे पक्का। कितना पक्का? खुशी को जाने ही नहीं देना ना। खुश रहे।

Shit.

0: 加一点，说不够甜，不的心肝疼呢。我那个心肝也心肝呢。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

cierto.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

I'm plugging. कर सकते हो ना? अभी पाप दादा कहे हाथों पर करो तो कर लेंगे ना, करो नहीं लेकिन कर सकते हो ऐसे।
です。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

0: Espero que Tata
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन वो सबसे समीप बाप दादा के दिल पर रहते। इसलिए इस विशेषता को सदाई सामने रख अपनी विशेषता को बढ़ाते रहना। ये समय पाने का बहुत सहज साधन वैसे तो सभी के लिए है, भारतवासियों के लिए भी, लेकिन डबल विदेशों में मेजॉरिटी में ये विशेषता है। आप इसी विशेषता को अपने में भी बढ़ाओ और बढ़ाते समय आते समान बने टीचर्स।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस समय आप हरि का आत्माओं के प्रति रहम दिल और दातापन कुछ न कुछ देना ही चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने के वृत्ति से दो, चाहे सभी पाप के कौन हो, राइट हैंड हो ना, राइट हैंड्स द्वारा आत्माओं को सुख शांति का अंजलि तो दिला।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो सही स्वभाव।

0: सेट नहीं होते हैं तो जहाँ स्वमान नहीं वहाँ क्या होता है जानते हो ना, ये अपमान या तो स्वमान है या तो देवान।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी थोड़ी खिटखिट हो तो अभी चार के पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना। भावना से जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो यज्ञ के हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत है जो मारते थे, मारते हैं ना, तो बहुत मारने वाले भी माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वो पाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगे हमारे घर में तो लड़ाई होती है, मारते भी है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब कोई बदल सकती है तो आप नहीं बदल सकते हो। शुभ भावना और अपने चलन परिवर्तन हो जाती तो वो भी नरम हो जाती है, गर्म नहीं होते, नरम हो जाते। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चले, गिलानी नहीं करे ज्ञान की, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है क्या भी है, आदतें खराब है, लेकिन ये तो कहे माता जी बहुत अच्छी, हम ऐसे हैं, लेकिन माता जी इतना प्रभाव तो बदली होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है, ठीक है माता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं। इस जन्म का कनेक्शन तो बाप दादा यही चाहते हैं, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रहो। जैसे बाप के तीन रूप हैं, ऐसे आपके भी तीन रूप हैं। ब्रह्मा, फरिश्ता और देवता, इन तीन रूपों में इसलिए महामंत्र क्या है, मन मना भव।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: परसेंटेज योग की स्टेज की वो साधारण होने के कारण जीवन में परवाह हो, इसलिए चमक का खाता कोई कोई समय का जमा होता है। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती, उसमें बहुत कम
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: They fell. तो बात कर जाएंगे तो बहुत और कितना सामान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं।
2: मतलब
1: मधुबन वाला है मधुबन वाला है तो इतना अपना स्वमान सदा इमर्ज रखो मर्ज नहीं इमर्ज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बर्तन काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करेंगे, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे, तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

0: ऐसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। पता हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलते हैं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? खुश नसीब और खुश नेमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद चाहते तो सभी है, बाप दादा आज शिकले देख रहे हैं, चाहते हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना तो बाप से किया हुआ वायदा भी बुला देता। फेस्ट कदम एक मिनट अभी भी एक मिनट पावरफुल।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

see

0: चिवी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? समझा? समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। तो मेरा स्वभाव, इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे वो याद करो, मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। तो जो किट किट करती हो ना वो खत्म हो जाएंगे। इसको कहती है भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान। Sit.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम युग के ड्रामा में

0: Richtig gelernt. Und der Bettbanana. Baftatabi. Job für dich, Nein. Karabelle, Wally, Atmai. Atier.
1: Thank you. आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती

अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे Yeah.

chico.

मास्टर नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते, गिरा हुआ मुरझाया।

Wasser.

चिकरों कितना समय बीत गया, अभी समय की समीपता

ऐसे समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रहे हैं, करना तो पड़ेंगे ही। आप लोग आपस में उसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेंगे ही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।
4: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं बोलता है। बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं बोलते, क्योंकि सिखिलते हो। देखो कहाँ कहाँ देश विदेश के कोने कोने से साथ देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? साथ देखी बाप ने, काला है गोरा है, शाम है सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा। तुम बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है? किसका है? दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है। कहती है बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। होशियार है बच्चे भी, और बाप को खुशी है रखने वाले बच्चे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी कर।

लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसे आती है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता। समृद्ध दिवस कहा जाता। Will power.

साथी है सब।

Chat.

sing. Don't.

Suddenly.

Daneben. Warte. Jobacha. Jitna. Afyakt isthiti mein. Isthit ho. वरदान चाहिए वो सहज प्राप्त होता है खुला भंडार जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है सने रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती सहज प्राप्ति होती है गिफ्ट मांगी नहीं जाती है सुतई प्राप्त होती है पुरुषार्थ से Fart.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ये आशय है दृष्टि लेना भगवान से, समर्पित वालों की यही आशय है।
4: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी। लेना अर्थात दृष्टि में पाप को समान, ऐसी दृष्टि लेना।
5: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सहज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों, बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर। तीसरा जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों, कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को, मुश्किल योगी या सहज योगी। नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है। कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या, याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अगन है, अगन कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती। लोहा भी बोल्ट बन जाता,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय की गति को देख रहे और बाप दादा तो बहुत समय से अचानक

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है, ये निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, सारे दिन में दो शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो, वो दो शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने बड़ी चेत दे दिया है कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो ये याद करो कि मैं साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय ये एडिशन करो, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी चेक करना अपने राज के संस्कार, अभी से धारण करने ही है के नहीं करना, एक के दूसरा
2: समाना पड़े, किनारा करना पड़े।
1: लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया पक्का कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना। क्यों कर अभी अचानक के खेल बहुत होने हैं। और बाप दादा के चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा, ये नहीं। इसीलिए भाव और भावना, आत्मक भाव, शुभ भावना, और ये शब्द ये तो होता ही रहता है, ये तो करते ही है ना, चल ही रहा है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ।
2: संकल्प के रूप में ये तोपा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले भाव के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो भाव के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का ईशा और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए फेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि फेस्ट मुश्किल

0: चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे, तो जैसे समझते हैं।

0: पवित्र प्रवृत्ति बनाई तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वो क्यों आपको दिखाई देंगी? क्यों कि क्रोध पर तकिया दिखाई देता है? जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। पर्तक्यता चाहते हो तो ये पर्तक्य प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होके सुते आएंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ちゃった。

Дядька Реме, седь

0: मस्तक में अनुभव करते हैं। अपना शीशन है सारा कलप सनई बना देता, निरंतर याद, निरंतर लौ में लीन होने वाली आत्मा सदाई राई बनाने वाली होती। क्यों? कि सने में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती। और
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सबकी बातें कहाँ गई।

Ícaro. ये समझेंगे कि ये

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे सम्मत संपर्क में फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना। परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, पिर्चा तो बनती जाएगी, साधारण पिर्चा, लेकिन अभी नस्तीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

姐。

बच्चों के आगे हंसो।

सदा विजयी बनना। जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल। आपका जन्म से

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे समय पर आप मूर्ति कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे जैसे अभी अनुभव करती है ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे, शांति मिल गई फरिश्तों द्वारा, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाक अर्थात अंतम स्थिति, पावरफुल स्थिति वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। आता है अपना रूप सामने, मार्च करो, कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे, सकाश दे रही है, तब कहेंगे जो आप गीत बजाते हो ना, एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शक्तिवान सोते से तो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

awesome.

0: टेंशन से रहके दे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छे अच्छे मत किया, क्या हम आपस से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पराई चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Shadow.

Bonne journée.

Is it?

bien.

coucher.

Pop.

know me.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप दादा का याद प्यार देना और मुबारक देना। बाप दादा की मुबारक रोज अपने को देना बाप दादा देता है, और आप अपने आप को देना। बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश। जैसे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, ऐसे रात को गुड नाइट भी सबसे करते। इसलिए अपने आप को मुबारक दे के
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा और पत्नी चारों ओर के बच्चों को देख हर्ष

Yeah.

0: हो सकता
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

serak.

Tata. Saman Samparak. Or Seva Me. Rete Hue. Sarva or Sarva.

तीसरा खाता है। पुण्य का खाता। पुण्य

सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में, संबंध

0: Sauval, Pau, or Pau Nasi, Siva Karna, Isse, Punya.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वैसे अभी शिवा से लगन है, ये बाप दादा ने देखा है कि शिवा से लगन अच्छी है। शिवा के लिए एवरेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवरेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मा की स्थिति में विशेष चाहे शक्ति की चाहे शांति की चाहे परमात्म प्यार की कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलो और वाणी साथ साथ संदेश दो, वाणी द्वारा संदेश दो मनसा आत्मा की स्थिति द्वारा के समय आपके बोल आपके मस्तक से नैनों से सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहती है बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप के अनुभूति का भी वर्णन करे मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन अगर ठंडा वातावरण कर सकती है, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। समाप्त कर अपना राज लाए।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल करो, सेवा में वृद्धि होना अर्थात खजानों को सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सदैव वृद्धि होती जाएगी। हिम्मत दिलाओ, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में संबंध संपर्क में भी कर्म में भी मत लो, टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना, क्यों को जो बाप की मुरली सुनाने की चांस मिले और तख्त मिले ये एक्स्ट्रा मदद है। तो हिम्मत और खुलास दिलाओ,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: डायरेक्ट दाता से लो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Peace.

Ciao.

0: से परिवार से वो तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतेंद्रिय सुख की फीलिंग शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव करो। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहां भी नहीं मिलती।
1: अभी

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना। कुछ भी हो जाए अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो, पटको नहीं, कभी किस सीट पर कभी किस सीट पर नहीं। अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के माफक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई चिपकली आती है गंदी। कार्टून शो है, अपने सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आया, आने दो, देखते रहो।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: धन तो सबके पुराने है, चाहे जवान है चाहे बड़ी है, छोटी और ही परों से भी कांकर कमजोर, चाहे बीमारी पड़ी है लेकिन बीमारी सुस्ता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती क्यों?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो, क्यों कि कलयुग से

सफाई का ना ये बीमारी याद नहीं दिलाती। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति पर रहे उस स्मृति में कहेंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएंगे, खुशी दिलाएंगे तो बस दो तीन दिन में दवाई से ठीक हो जाए। कभी भी दवाई या आजकल के तो बहुत नए फैशन है, कलयुग में सबसे ज्यादा है इन्वेंशन आजकल दवाई।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बाप दादा ने जो ड्रिल बताई थी याद है, 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक बार ड्रिल करनी है, वो किया जिसने वो ड्रिल की है, वो हाथ उठाओ, किया किया दोनों ने हाथ उठाए, क्यों तो थोड़ा टाइम किया, बहुत टाइम नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे, कम से कम बताएं, कम से कम बताएं, आज कम से कम 8 बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम 8 बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर, देखेंगे नहीं, करनी है, चाहे मिस हो जाए तो 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे सोना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना, देना आता है ना, लेना तो आता है लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या, देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाए क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना है। जो भी आए मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना, तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं, आप सभी भी
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Shut up. जो समझते हैं दृढ़ संकल्प करे। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर, क्या करे कैसे करे, निकलता नहीं है, ये नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति डरने बहुत अच्छा करती, इसीलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है एकाग्र कांटा हो जाता। तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हल चलो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति वहां एकाग्र हो जाए, डरने हो जाए, किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Gefahres Quality बन सकते हैं। जितने फारस क्वालिटी भले तो चार स्थान और भी है, उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन कर्नाटक के धरनी से फारस बहुत निकल सकते। ताली नहीं सब बजाना, निकाल के दिखाना है। अच्छे अच्छे है, बाप दादा की नजर पड़ती है, लेकिन टीचर्स की नजर नहीं पड़ी है। सुना पांडव, सुना पांडव, बहुत निकल सकते हैं। बाप दादा को कोने कोने में याद आते हैं। सारा यज्ञ कर्नाटक के वारिस चला सकते। सेवा में लग गए, पर्सनल सेवा।

सेवा का चमत्कार वारस निकाल सुंदर पालना चाहिए। उठाओ पान का बीरा उठाओ, दादी को कहो हम सहयोगी बनेंगे, बनाएंगे और बनेंगे बनेंगे बनेंगे बनेंगे। आज देखेंगे, 6 मास में देखेंगे। क्या कहा? कि पहले आप निकालो, दादिया आएगी कुछ वारस तैयार करो, फिर दादियों को बुलाओ। आएगी जो प्लान बनाने चाहो वो बनाओ, लेकिन वारस निकल सको करके जाना। टीचर्स वारिस क्वालिटी कैसे निकाली जाती है ये क्लास कराना।

क्या समझते हो सकता है ना, हो सकता है। अच्छा, 6 मास देखेंगे, 6 मास का टाइम दे रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का किसी में भी चार में से

0: Nicky. See my baby.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: That's it.

0: उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्माएं अनुभव सुना है तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों के निमित्त पर निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते। Yeah.

0: cosas a no pagarte. Baba ya me llevan moti. Tu prato ni el. Lekin abusan a mi yoga.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

कि हर एक बच्चा

So

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है। अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो, अच्छा कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूखम चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सूखम चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कमी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप

दूसरों की बातें याद करते, ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाता, तो फुल स्टॉप नहीं लगता। लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी, और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती। तो इसको चेक करना, अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी तो अंत मते सोगति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसलिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: टीचर से बाप

me y Materna. हर एक टीचर से बाप ये चाहता है कि हर एक के फ्यूचर से फ्यूचर दिखाई दे। नियमित टीचर्स को बाप दादा चलन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See?

बाप दादा 20% छुट्टी देते है। मंसूर मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात

टीचर्स बताओ, हो सकता है 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, फुल विजय मुश्किल है कि इजी है? इजी है, हाथ उठाओ, इजी है, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना। 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है। क्यों

0: चलते चलते माया अलबेला और आलस रायल आलस ये रायल आलस अलबेलापन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Like

stuff.

Sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता है जो जेरी से नैनो से दो शब्द से अभी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हैं, लेकिन
2: आते ही

0: भारी वर्तन कर ले। आज मन्ना के खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के साधन बनाते हैं। वो अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय ले आवेल और वावाले की जर वाह कमाल है परमात्म आत्माओं की। ये शिवा समय प्रत समय जितना अल्पकाल साधनों से भी परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएंगे, क्योंकि आप है ये खुश नसीब।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आगे बढ़ेंगे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ
2: जैसे

से पालना

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है, क्या कहेंगे? Because

hissa mib. Ban kayo. Sati ban Apabi.

sé. Que sí.

aşkım.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सक्सेसफुल कभी भी जो नहीं होते उसका कारण क्या है। वैसे
2: पीछे ही है
1: इससे इस सच कमजोर चाल को समाप्त करो। फंसो नहीं लेकिन समाप्त करो। है शक्ति है समाप्त। इस जाल में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट है। सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये परमात्म बर्थ राइट है। इसको कोई छीन नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और सुतः रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: किसको

सत्वचन।

Ini satu aja. Aku nemu ki value.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: धरनी पर बैठ

0: pasar, Loki. Fällt wir durch Hilde. Fällt wir bist du ey. Durch Hilde. Fällt wir.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना है। अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से, ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनताई पवित्रता की ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण। कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देंगे।
1: समय संपदा का

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार। उसके अशांत आत्माओं को कुछ तो चली

0: अटेंशन खिंचवा रही है। कि अभी ज्वालामुखी योग की आवश्यकता,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। सनी, सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सनी, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल समाते रहो। Oh.

0: Sapa! Sani ki shakti me rao. To sada ke liye mehnat se mukt ho jayenge. वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हैं ना, तो मेहनत से भी मौत उसका साधन है. सने में समाया हुआ रही शनि का अनुभव सभी को है ना कि नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप से बाप दादा सबसे ज्यादा किसका है, किसका है, सभी हाथ उठाएंगे मेरा है, ऐसे ना है ना है. पीछे वालों का भी है हाथ उठा रहे, साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं है सबका. तो बाप दादा आज की कहती है शनि की शक्ति सदा कार्य में लगाओ. योग लगाते हो ते भूल जाए, देखी दुनिया भूल जाए, माया जीत बने. जब सने की छत्र छाया में रहेंगे सने की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती. सने के साखट से बाहर आते हो ना तो माया देख लेती है और अपना बना देती है, निकलो ही नहीं, समाए रहो. सने ही कोई भी कार्य करते हुए सने को नहीं भूल सकता. सने में खोया हुआ हर कार्य करता, जैसे आज के दिन कोई नहीं ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या? अपने समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ सने है उस जैसा बनना, ये मुश्किल नहीं होता है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना? वो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे, निकल आएंगे 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो, जरूर क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप की मदद तो है लेकिन समय पड़ने में।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Se llama Pochki o nada.

लेकिन सनी ने परमात्म सनी बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्म सनी के पात्र बनेंगे। Nurse.

0: बात करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना, है स्नेह सकते हो किसे? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है, न इतने तारे है न सागर में चल,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा, बाप दादा ने ये भी ट्रेडिशन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में देवता बीच में

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वाचा की सेवा भले करो, तुम धाम से करो, लेकिन
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: क्यों को होना

coba.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yeah.

वायुमंडल

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोग जोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले पाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के व्रत भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ के कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं दे। आजकल समय अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सब निमित बने हुए आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

Chick.

not.

Hey, Raja.

Kiss him.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Hagan sin que yo del sin papá que tiene un co satán se. Cushy.

समय तक खुशी हो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी दिल छोटे नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा, छोटा बाबा है क्या, बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। सलोगन है बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल, जो भी किचरा आवे ना किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे इस दूर कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है, सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा हाजिर बाबा बंधा हुआ है, बच्चा बाप का बच्चा भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो ये हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

了。

0: 个तो नाम रूप खत्म।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सहज परिवर्तन करने में मदद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Y tu ala.

मनसाशक्तिद्वारा वैब्रेशन चेंज करना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ होना चाहिए।

Yeah, good.

Jakie bramary?

संकल्प के कर तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता। ये तो एग्जाम्पल है आपके आगे। Awesome.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय ना सिखाएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए।

कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जावे। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ ना कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते। दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। क्योंकि हर एक टीचर सेवा तो करते ही और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते हैं। जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स पर

0: और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

दृढ़ संकल्प अपने दिल में करो। छोड़ना है अपने दिल में सोचो, लेकिन रोज अमृत वेले के बाद उसको चेक

そっか。

Puppy.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आत्माओं के लिए

Глава 7.

Yes, sir.

Papi. Salva.

परिवर्तन की जिम्मेवारी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Ethiopia.

Peace.

Sad.

記憶。

समझ

없이 그냥.

0: इस समय के सफलता का प्रलाप स्वतः ही प्राप्त हो जाती, इसलिए चेक करो खजाने मिले खजानों से संपन्न हुए लेकिन स्वप्रत व विश्वप्रत कितना सफल किया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खांसी के लिए
2: दादी गए थे बगीचे में, दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने दृष्टि ज्ञान दिया था, अभी पक्का हो गया।
1: गुलजार दादी गई थी इनो की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
3: ये तो कल पहले नौका भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे। अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभ्यास करो, एक सेकंड।

शंकर लैब में एकाकर होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो, एक ही